0: गरिने विभेद केवल गलत व्यवहार मात्र होइन, कानूनी रूपमा दण्डनीय अपराध पनि हो।
1: अरूको सम्मान गरौ, सम्मानित जीवन बिताऊ, सभ्य समाज निर्माण गरौ।
2: नेपाल सरकार।

जलजला ट्रायल चेक। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा दिउँसोको एक बज्यो।

0: Zabangzaro Yamadi, Polo, Gilea, Pitam Tisra, Radi, Bandamaya, Gilabaya.
1: Picnic Bongos Bako, News of Tansu Chimney, Mary Tansu Sadi Chimali. Bongo, which is Hamid Gibarico, Turo, Vidi Ori, the name Kubat and Dimachi.
0: Nanta Namla Lizio, one who worked as Samurai, Samurai Boliuni, Alenta Onuman Duni, Belstan Tansu Gibi.
1: This was Hamila Kola, Tansi for the Hodigate, but in the case of New Gelazu. आवो मजिले बनाए गेम गेलो गेम अमृति मलाई ओल्डन मैरिज मलाई गे
0: बन्जंगल सजुली सिउ गेम बारी ल बाली माली कुचिला चुली यात्रा न सताउसे छिनी ने चासो सैदे के खेले ह
1: बन्जंगल मेला कि गेमा ये निराला कि नि पाच जना खर्ना मारे मिली दे बनाए चामा जने के छले
0: बत्ता सुचुली जु बेला तो रिजिम के कोटल ने के सतांकी ने हेनो छु म छिनी ने चासो के सै ह
1: मेला दि नि दै गेम न के पछि
0: Gets a Tamla Poyala, Yelagi Gisantini, Gets a Gauda Karele, Parhari Karele, Gaza, Insari Gaupalika, Gaukare Kalikae, Kumu, Karele, Kabari Gibi.
1: Sunsari Gaupalika, one Batagram Saza, because the Satan Samiti, Gavan Rilka.